राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: ये है
1: लाइका रेडियो सनशाइन स्काईस्क्रेपर्स एंड सुक्स
2: फॉर लेस देन यू थिंक दिस इज अफोर्डेबल दुबई फ्रॉम साउथ ओल्ड ट्रैवल वी've सिक्योर्ड स्पेशल पैकेजेस विद आवर टॉप होटल पार्टनर्स
1: फ्लाइंग डायरेक्ट विद एमिरेट्स सो यू कैन एंजॉय 3 नाइट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन वेदर इट्स अ फैमिली हॉलिडे अ रोमांटिक ब्रेक और अ शॉपिंग ट्रिप दुबई हैज नेवर बीन बेटर वैल्यू
2: हरी अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड ट्रैवल बाय द 10th ऑफ डिसेंबर कॉल अस ऑन 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now
1: South Ol Travel pay less enjoy more
2: South Ol Travel at all protected
1: passports tickets kids tablets
3: all packed but what about our phones we'll need them for maps whatsapp photos
1: and checking in with grandma
3: exactly roaming abroad can get expensive
1: that's why I got Simzy data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available
3: so we can keep our numbers for whatsapp and bank otps
1: yep flat rate no bill shock and ready in just 3 minutes
3: holiday sorted
4: save an extra 10% with code ROMFREE10 Simzy powered by Leica Mobile check if your phone works at simzy.com terms apply
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com
6: good throughout the night with the biggest soothers it's your Leica Radio

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्हों पाई, कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
2: मेरठ की chaotic family में आई picture perfect दुल्हन।
3: अरे मुनी क्या हुआ? कैसे बेहोश हो गई यार?
2: और life बन गई heaven।
4: भाभी डायन है।
2: But wait. ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
5: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना, लो आ गई।
0: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
5: आप सिर्फ मजे लो।
6: No, sorry, mate.
7: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilevan.
10: 073-00998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: बात क्या है बंटू?
2: अरे बोलो काक भसुंडी।
3: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
1: अरे मुनी क्या हुआ? किसी
4: पे तो क्या?
3: और लाइफ बन गई हेवन।
5: भाभी डायन है।
3: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
6: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
7: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार, प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
6: आप सिर्फ मजे लो।
8: Some of those delicious noodles.
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup, and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups, and bowls now available everywhere in the UK.
10: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway, and Austria with TravelHubWorld.com.
11: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7. Or 0208-782-8833.
10: Travel Hub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
14: Rebook your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to Kalyan Jewelers store at Green Street, Upton Park, London to grab this offer. Conditions apply.
15: Send money back home to India with Remitly. Make Diwali shine brighter with Remitly. Quick, safe and affordable money transfers. No fees on transfers of £500 or more from UK to India when sending for bank deposit or UPI until 31st December 2026. Exchange rate applies. Download the Remitly app.
16: Wake up. Feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
17: Like a radio.
16: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: the Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW137NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
1: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati for the meals that become memories. Loved by generations since 1970.
2: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
2: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
2: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
4: Wow! આટલા સ્વાદિષ્ટ મઠિયા ને ઘૂઘરા શું ઘરે બનાવ્યા છે?
5: ના રે, આ તો શાયોનામાંથી લાવ્યા છે.
4: વાહ, તો આ મીઠાઈ ને ફરસાણ પણ શાયોનાના જ હશે ને?
5: હા, બિલકુલ.
6: Celebrate the festive season with Shayona. Enjoy crispy mathiya, delicious ghugra, savory farsan and mouth-watering mithai. Visit Shayona shops or Sri Swami Narayan Mandir, Neasden. Also available at selected Morrisons, Sainsbury's and Tesco stores or shop online at shayonauk.com. शायोना स्वाद जे त्यौहार ने बनावे खास.
0: Escape to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Japan, Korea and Philippines with TravelHubWorld.com.
7: हम से सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
8: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
8: Visit TravelHubWorld.com.
9: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
10: Rebook your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to Kalyan Jewelers store at Green Street, Upton Park, London to grab this offer. Conditions apply.
11: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
12: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं शावर लेने में कम समय लगाएं लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए पानी अनमोल है इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं
6: द ब्रेकफास्ट प्लान परफेक्टली ब्रूड बाय यू डॉनी ब्रास्को ऑन लाइका रेडियो
13: Diamond Track of the Hour, sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry.

0: Africa Radio, finalist in three nominations at the Asian Media Awards 2026.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: ते गोल गप्पियां दा पानी।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to celebrations since 1970.
4: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
5: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं शावर लेने में कम समय लगाएं लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए पानी अनमोल है इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर
6: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है भगवान कार्तिकेय की माता मां स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है ममता की छांव मां से पाएं प्रेम के दीप हर घर जलाएं मां स्कंद माता का आशीष मिले हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
4: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है स्टार टूर्स ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
3: लाइका रेडियो नाउ इन मोर प्लेसेस देन एवर बिफोर बर्मिंघम ब्रैडफोर्ड हडर्सफील्ड एंड लीड्स

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Sunshine, skyscrapers and souks.
2: For less than you think. This is Affordable Dubai from South All Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
1: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
2: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
1: South All Travel. Pay less, enjoy more.
2: South All Travel. At all protected.
3: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with Karamsad Samaj UK on Saturday 17th October at Nakshatra Hall, Snaky Lane, Feltham, TW137NA. Come along and enjoy the festive spirit with us.
4: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati for the meals that become memories. Loved by generations since 1970.
5: बात क्या है बंटू? अरे बोलो काक भसुंडी।
6: मेरठ की क्योटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन।
5: अरे मुनी क्या हुआ? क्या हुआ? तो
6: और लाइफ बन गई हेवन।
7: भाभी डायन है।
6: But wait, ये भाभी है या डायन इन डिस्गाइज?
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना? लो आ गई।
2: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय। नई नवेली इन सिनेमाज अक्टूबर 16।
8: आप सिर्फ मजे लो।
9: Something new has just landed at Cake Box. Nationwide delivery is here. Now you can send a personalized cake box straight to someone special, wherever they are. Birthday miles away? Send a cake. Big congratulations? Send a cake. Just want to make their day? Send a cake. And because it's new, delivery is free for a limited time only. Wherever they are, be part of their celebration. Cake Box Celebrations, now delivered nationwide. Order now at cakebox.com.
10: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
10: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
12: चनिया चोली रेडी डांडिया रेडी तो बस अब आपकी कमी है।
13: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
12: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
13: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
12: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
14: Enjoy your Diwali with Carotino Better Ghee, the healthier, low-priced, cholesterol-free butter ghee alternative. Delicious Carotino Better Ghee is available from Tesco, Morrison's, Asda and local grocery shops. Look out for special Diwali offers on Carotino Better Ghee. In stores now.
15: Discover the magic of India with Tickets to India. Book online at tickets2india.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
16: Rebook your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to Kalyan Jewelers store at Green Street, Upton Park, London to grab this offer. Conditions apply.
17: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers. Fix leaking taps or toilets using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
18: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
19: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970. A Laika radio classic plays now.

0: Like her radio.
1: फ्री गोल्ड कॉइन्स और डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ग्रीन स्ट्रीट, ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे, साउथ हॉल.
3: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी.
4: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल.
3: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में.
4: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल.
3: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947.
4: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116.
3: दिवाली का जश्न अपनों के संग.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: अंदाज आपका, चमक हमारी. खूबसूरत चेन सिर्फ 225 पाउंड से शुरू. मीनार ज्वेलर्स, 181 अपर टूटिंग रोड. कॉल 02087677627.
7: Do you know you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit? You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 03444124444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
8: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNC supply.
10: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
11: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
10: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
11: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
12: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.

0: the golden voice of Shan. Tanha Dil Tanha Safar. Oh, I love this song. This is the song that actually made him really, really popular. But the recognition galore after this song. Tanha Dil Tanha Safar. What a beauty.
1: Tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: Okay, everyone's struggling now with the Untangle the Tangle, all right? So you're struggling. So some of you are giving me just one song. I need both songs. I know it's really hard, isn't it?
2: Vish Bhatnagar's Untangle the Tangle. Vish Bhatnagar's Untangle the Tangle.
0: Name the two songs. 07-424-222-222. What can it be?
2: Like a radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So for £1, you're going to get 125.4 Indian rupees. Remember to go into the branch, do it online, or use the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Vish Bhatnagar across Greater London with Reload.
3: Oh, hello. You caught me practicing on my new slide whistle. You see, Specsavers have asked me to tell you about something very exciting. And as it's radio, I thought, well, it's always best to use sound, isn't it? So here goes. While prices everywhere are going, at Specsavers they're coming. Thank you. Eye tests now only £10 at Specsavers. I could have just said it, I suppose. Offer ends 31st of October, excludes Scotland. Conditions apply, see our website.
4: चनिया चोली रेडी डांडिया रेडी तो बस अब आपकी कमी है
5: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
4: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
5: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैटसोमा
4: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
6: फ्री गोल्ड कॉइन्स और डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
7: यस बेबो
6: कैच क्या है
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे साउथ हॉल
8: नवरात्रि का जोश गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद
9: बीकानेर वाला परंपरा भी
8: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे राज कचौड़ी टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट किंग स्ट्रीट साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड गैंस हिल इलफर्ड बीकानेर वाला इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
2: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, you've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
3: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 02 03 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: Did you know Kavita Krishnamurthy won her first gold medal in a music competition at just 8 years old? A remarkable talent from childhood.
5: Kavita Krishnamurthy celebrating Diwali, 1st November at Royal Albert Hall, London. Tickets at box office. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
4: Craving the taste of home this festive season?
6: Enjoy curries, chole bhature, vada pav, raj kachori, mithai, special desserts and more at Haldiram's first London restaurant.
4: Visit Haldiram's in Leicester Square, London today. Haldiram's.
7: When you decide to invest with Barclays award-winning investment platform with no monthly fee, you've made a good move. It can make you do a victory dance in a lift. At work. Oh, sorry. Barclays Direct Investing now with no monthly fee. Good move. Barclays, backing your future. Other charges such as trading fees apply related to your account activity. For details on barclays.co.uk/directinvestingfees.
8: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है. भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है. उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है. ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिले. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
9: नवरात्रि स्पेशल ऑन लाइका ब्रॉट टू यू बाय स्टार टूर्स. यूरोप जाना है तो स्टार टूर्स के साथ ही जाना है. स्टार टूर्स, ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
10: दिस इज लाइका.

0: some of those delicious noodles.
1: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर
4: Tasty track of the hour brought to you by Koka Noodles.

0: visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323 0730-00-9823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक हैं। उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है। ममता की छांव माँ से पाएं, प्रेम के दीप हर घर जलाएं, माँ स्कंद माता का आशीष मिले, हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें। लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।
3: Navratri special on Laika, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970. A Laika radio classic plays now.

0: हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay. Yeah, love you too.
3: Coffee with Karan Season 9. Watch it only on Jio Hotstar.
4: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com।
5: A little sparkle, a lasting impression. Diamond tennis bracelets from £2,500. Meena Jewellers, 181 Upper Tooting Road. Call 020-8767-7627.
6: दिवाली की मिठास अपनों का साथ और अल्लूर का स्वाद। लेंटल्स, मसाले, सॉसेस, जैम्स और जूसेस से सजाएं अपनी फेस्टिव टेबल। अल्लूर की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सबसे निराला मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Big celebrations, sweet moments, and Diwali offers you'll want to see for yourself. Discover fresh mithai and all your grocery essentials at Sira Cash & Carry, Amrit House, Springfield Road, Hayes. Sira Cash &
2: Carry. इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती. अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं. हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है. हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं. शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए. पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा. हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर
0: Giant. Diamond Track of the Hour, sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry.

0: Easy listening with Radio Wally. Leica Radio.
1: Excuse the voice note, lads. Just got to a job. Drill's gone walkabout. Anyone got a spare?
2: Not again. Second time this month, innit? Yeah, I got a spare.
1: Oh, legend. I'll have it back to you tomorrow.
2: It's all right. Next round of bacon rolls are on you, though.
3: We're here to keep your business connected with the people that matter most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile for Business. Sign up now and get up to £50 credit as a welcome bonus. Offer ends 1st of November. For terms, visit tescomobile.com/business.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: Search is changing.
6: Customers aren't just using Google anymore.
5: They're asking AI.
6: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
5: One business, one recommendation.
6: So when someone asks AI, who's the best company for this?
5: Will your business be the answer?
6: Or the one that got left behind?
5: The future of search has already started.
6: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
5: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: इस दिवाली शॉपिंग भी मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी
9: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल
8: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में
9: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल
8: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947
9: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116
8: दिवाली का जश्न अपनों के संग
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
11: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
12: कभी सोचा है? 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो.
13: Catch Dil Chata Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
14: शादी करने के लिए किसी से प्यार करना बहुत जरूरी. तुम्हें क्या लगता है?
13: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/saf/UK.
15: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
16: आज नवरात्रि का पांचवां दिन है इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है भगवान कार्तिकेय की माता माँ स्कंद माता ममता करुणा और संरक्षण का प्रतीक है उनकी आराधना हमें अपनों के प्रति प्रेम और देखभाल का महत्व समझाती है ममता की छांव माँ से पाएं प्रेम के दीप हर घर जलाएं माँ स्कंद माता का आशीष मिले हर परिवार में खुशियों के फूल खिलें लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं जय माता दी
17: Navratri special on Leica, brought to you by Tilda. Tilda Basmati, bringing families together one meal at a time. Loved by generations since 1970.
18: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: sunshine, skyscrapers, and souks.
1: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
0: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break, or a shopping trip, Dubai has never been better value.
1: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
0: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
1: Southall Travel. At all protected.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: कैशबैक रीमॉर्गेजेस योर मॉर्गेज शुड वर्क फॉर यू
5: बात क्या है बंटू अरे बोलो काक भसुंडी
6: मेरठ की कियोटिक फैमिली में आई पिक्चर परफेक्ट दुल्हन
5: अरे नहीं क्या हुआ कैसे पे हो तो गया
6: और लाइफ बन गई हेवन
7: भाभी डायन है
6: बट वेट ये भाभी है या डायन इन डिसगाइज
8: तुम्हें डायन ही चाहिए थी ना लो आ गई
1: नई नवेली स्टारिंग यामी गौतम धार प्रोड्यूस्ड बाय आनंद एल राय नई नवेली इन सिनेमास अक्टूबर 16
8: आप सिर्फ मजे लो
9: Tune in to Navratri Hours on Leica Gold at 9 a.m. and Leica Radio at 7 p.m. Navratri Hours is sponsored by Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
10: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं शावर लेने में कम समय लगाएं लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए पानी अनमोल है इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर
11: On this week's Leica Extra podcast, we bring you an unfiltered episode featuring Leica Radio Network's male presenters, including Raj Badden, Sandy Shah, Vish Bhatnagar, and Deep Raja.
12: Do women bring something to broadcasting that men simply can't? I just think the sound of a woman on air, for me, any day, is better than a man's voice.
13: I've got to say, that's vastly unbalanced, and I totally disagree.
11: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Next, the biggest romantic songs are up next on Love Sound.
14: Leica.
11: Radio Wally's Lazy Lounge. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.